0: सबको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के 702nd एपिसोड में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और आज हमारे साथ हमेशा की तरह शामिल हो चुके हैं साहिल शरण जी, जो हमारे साथ देंगे पेनलिंग पे, और साथ साथ हमारे गेस्ट जो आ चुके हैं आज के लिए, जो है धीरू जी, धीरेंद्र जिसे हम ज़्यादा करके धीरू जी के नाम पर जानते हैं, और साथ साथ में संजय। और हम आज जो विषय जिसके बारे में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, वही ग्रैंड कीर्तन संध्या। तो उसकी जो पूरी समाचार है आज आपको इस एपिसोड में मिलेंगे, और साथ साथ में हम शिवनील को भी शुक्रिया करेंगे जो समय निकाल के हमारे साथ आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, जो हमारा जो आज वीडियोग्राफी संभालेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम हमेशा की तरह क्या करेंगे कि एक गीत साहिल ने कुछ एक्साइटेड कोई अच्छा कोई गीत हमारे लिए ढूंढा है, इसलिए बजाने की कोशिश करा। तो साहिल आपको हम समय देंगे, तो साहिल इज गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग फॉर अस, और उसके बाद में हम अपना जो इंटरव्यू जारी करेंगे। और उससे पहले साहिल, तो आपका जो स्पोर्ट्स की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, तो आई गेस आप एक्साइटेड हो कुछ शेयर करने के लिए?
1: नहीं, अभी नहीं।
0: जी हाँ, तो हमारे जो क्रिसमस डिडंट गो दैट वेल, बट
1: बहुत खराब रहा।
0: थोड़ा ज्यादा ही खराब था। एनीवेज थोड़ा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो गया था, वी आर होपिंग, बिकॉज हम जब क्रुसेडर्स उतने दूर नॉर्मली पहुंच जाता है, देन उसका जो वे बैक मुश्किल होता है, एंड देन वी वर आई मीन इट्स नॉट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग अ विन, बट एटलीस्ट वी वर एक्सपेक्टिंग अ मच मच बेटर आउटिंग, यानी कि काफी क्लोज गेम, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने को नहीं मिला। बट द अदर वे अगर देखा जाए तो फीफा वर्ल्ड कप ये चल रहा है, एंड न्यूजीलैंड आई थिंक येट टू प्ले, जो उसकी भी तैयारी हो चुकी है ना, ईरान इज देयर, सो आई थिंक इट्स गुड हम वो भी गेम देख पाएंगे। लेकिन कुछ गेम्स हो चुके हैं, आई थिंक मेक्सिको ड्रॉ था, तो अभी नेक्स्ट गेम कौन सा है?
1: नेक्स्ट गेम
2: आप कल सुबह होगा ना, सांझ को देखना है, 4 बजे ऑस्ट्रेलिया का गेम है,
1: ऑस्ट्रेलिया गेम,
0: which is good, Socceroos if I'm not wrong. जी, तो जो काफी जो गेम्स भी चल रहे हैं, सो एंड देन ऑल ब्लैक्स का भी गेम आ रहा है अगेंस्ट फ्रांस, और हमेशा कहते रहे धीरू आपने टिकट तो ले लिया होगा, क्योंकि जो लोग हमारे तरह जो देर में टिकट ढूंढते नहीं मिलता है, धीरू ऑलरेडी टिकट ले चुका होता तब तक। एनीवेज, जो आज हमारा टॉपिक है ऑब्वियसली स्पोर्ट्स नहीं है, एंड वी विल गो एंड वी विल टॉक अबाउट ग्रैंड जो कीर्तन संध्या यहाँ पे, और जो लोग हमें ज्यादा करके फेसबुक में देखते हैं, तो वी विल बी स्विचिंग ऑन फेसबुक आफ्टर दिस सॉन्ग। तो चलो साहिल, हम गीत सुनते हैं, उसके बाद भी हम एक ये जो इंटरव्यू करेंगे अबाउट 15 मिनट का रहेगा, एंड वी विल ट्राई टू कैप्चर एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल इस जो जो ये जो कीर्तन संध्या आ रही है, यानी ये जो सत्संग सनातन सत्संग बॉयज क्राइस्ट चर्च जो ला रहा है, तो उसके विषय में बात करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है, हमने एक इंटरव्यू किया था डोमिनिक, इज अ कैंडिडेट फॉर न्यूजीलैंड लेबर पार्टी, तो हम वो भी आपको सुनाएंगे। इट इज पार्ट ऑफ आवर केवाईसी, यानी कि नो योर कैंडिडेट, और हमारा जो मोटिव है जस्ट फॉर यू टू लेट यू नो अबाउट योर कैंडिडेट, जस्ट टू बी अवेयर कि वो क्या करता है क्या नहीं, एंड हिज व्यूज एंड ओपिनियन। इट्स नॉट ए इलेक्शन कैंपेन, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट, तो वी आर जस्ट लेटिंग यू नो, बिकॉज हमारा जो एंड गोल रहेगा टू encourage you to vote in the coming election. तो चलो साहिल, गीत सुनते हैं।

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथियों, आपका पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के इस प्रोग्राम में। मैं हूँ प्रेम डॉक्टर विनेश और ये हमारा 703rd एपिसोड है ऑन प्लेन्स एंड मीडिया। और हमारे साथ आज देर है साहिल ऑन पेंडलिंग प्लस जो शिवनील जी हमारे वीडियोग्राफी में हेल्प कर रहे हैं। जो लोग हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन हो रहे हैं उसका भी शुक्रिया करेंगे। और जैसे हमने पहले फ्रिक्वेंसी पे बोल रहे थे कि हमारे पास जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं, हम स्वागत करते हैं धीरू जी को और संजय जी को हमारे से स्टूडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड कीर्तन संध्या, ये जो पोस्टर आप देख लो फेसबुक पे, तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे। पूरी जानकारी जो आपको देंगे काफ़ी एक्साइटिंग है। ये रहेगा 18th of July, बहुत दिन नहीं बचा है। तो इफ़ यू आर, अगर आपका कैलेंडर फ्री है तो ज़रूर मार्क कर ले 18th of July, और समय है फ्रॉम 7 PM। तो इट्स अ गुड न्यूज़ है कि ये आ रहा है, और आई एम श्योर द जो टीम है काफ़ी जो मेहनत कर रहे हैं टिकट्स बेचने के लिए, सनातन सत्संग बॉयज क्राइस्टचर्च, और कुछ टिकट हमारे पास भी है। तो अगर आपको लेना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हो, अदरवाइज जो भी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो धीरू जी, आप बताइए कि आज आपका समय कैसे बीत रहा है?
1: ओ, समय तो बढ़िया है। अभी तो हमारे भी नाती भी आए घर पे, आ जाए सैटरडे को, तो दिन तो बहुत जिस तरह से कटता अभी तो।
0: हाँ, बहुत बहुत पूरा पूरा फुल ऑन बिजी करके रखा हुआ,
1: फुल ऑन बिजी है। हाँ। फिर तो तुम जानते हो घर से काम भी करते हैं, तो मैकेनिकल तो वो भी चलता रहता है, तो बिजी।
0: जी हाँ, बिल्कुल। तो धीरू जी एक क्वालिफाइड मैकेनिक है, जो मैकेनिकल काम वगैरह है। अगर आपको भी कुछ गाड़ी का कुछ इश्यूज है देन डू कॉन्टेक्ट धीरू, और घर से भी कर रहा है तो विच इज गुड। और संजय, आप बताइए कि आपका दिन कैसे चल रहा है? मुझे मालूम है आप काफ़ी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हो, और अभी आप फीफा का पूरा आपका पास नॉलेज है।
2: जी जरूर जरूर, सुबह जल्दी उठे, ओपनिंग सेरेमनी तो मिस कर दिया, थोड़ा गेम देखे, फिर आज सैटरडे है, शॉपिंग का दिन था तो हमने शॉपिंग किया, फिर घर वापस आकर वाइफ वो जॉब पे है तो कुकिंग वगैरह करे, थोड़ा काम किए घर के, फिर समय निकाल कर हम यहाँ आ गए।
0: जी हाँ बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि जो आपके बेटे आपको मदद करता होगा।
2: जरूर जरूर। आज सब्जी उन्हीं काटा है।
0: नो वरीज। तो चलो इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। जो ये ग्रैंड कीर्तन

0: संध्या आनो अमीन क्राइशियस इस नथिंग न्यू टू. जब हम कीर्तन की बात करते हैं जो काफ़ी मंडलीस यहाँ पे है क्राइशियस में बहुत सालों से, और जो कीर्तन भजन ये सब चलते रहता है, कभी कभी कवाली वगैरह भी हमें देखने को मिलता है, और त्रिकुटू वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध है क्राइशियस में. और दिस वन इज ऑन 18th of July, तो आप बताइए धीरू जी कौन कौन कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं.
1: जी हाँ, यहाँ के तो एक हमारा खुद का अपना कलाकार है जो क्राइशियस का, जिसका पहला बार हम लोग एक बार और स्टेज दिए थे लास्ट ईयर, निमित. ये भी बहुत अच्छे कलाकार हो गए. अभी अभी अभी अपना एक एल्बम भी निकाल दिया है, तो ये निमित है. और दूसरा रानी भी, जिसका पहला स्टेज हम ही लोग यहाँ पे क्राइस्ट में दिए थे, तो वो भी आ रही है. तो इस बार वो हम लोग ये सत्संग बॉयज उसको बैकिंग कर रहे हैं स्टेज पे, और निमित के बैकिंग के लिए ऑकलैंड से टीम आ रहे हैं, जो कि उसमें लिखा हुआ है जय भो वॉइस की.
0: हाँ, निमित का लिखा हुआ है कि सपोर्टेड बाय भक्ति सत्संग बॉयज ऑकलैंड.
1: ये सब जानते होंगे, दिव्यन खवाल जो उसी का ग्रुप है, वो भी शायद आएगा साथ में इसमें, तो वो भी उनके कोरस टीम में होगा साथ में.
0: ओके. और ये पोस्टर जब मैं देख रहा हूँ, इनका फोटो देख रहा हूँ, तो काफी यंग लग रहे हैं.
1: हाँ, बहुत बहुत कम है जो. तो निमित तो भी हम लोग सामने से
0: बजाना.
1: और इसके इसमें बढ़िया बात एक और क्या है कि इसका भाई वो ढोल बजा रहा है, निखिल.
0: निखिल ये दो भाई थे, बहुत छोटे थे
1: दोनों, बहुत छोटे से
0: जो बजाना शुरू कर देते.
1: मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए, स्पेशली इन लोग के जो आजा जी है, वो बहुत भारी टाइम निकालता है इन लोगों के वास्ते. तो वो मुझसे भी कभी बोलता है कि कुछ रे बैठा ऐसे देखते रहना कुछ काम. तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग यंग टैलेंट आगे निकले, तो इसीलिए तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे. तो फिर क्राइसिस में कोई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाओ, तो ताकि उनका भी कुछ नाम चले ना.
0: जी हाँ, सही बात है. और अगर धीरू जी की बात की है जो अभी हमें सुन रहे हैं, स्पेशली जो हमारे जो फिजिक जो क्राउड है यहाँ क्राइशियस में, तो दे आर ऑल अवे, बिकॉज हार्डली कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे धीरू नजर नहीं आएगा. विल बी देयर समहाउ कि चाहे स्टेज पे होगा, कहीं पे वो सपोर्ट ऐसे दिखेगा, और कभी कभी वो स्टेज पे गाते भी हमें देखने को मिलेगा. सो थैंक यू धीरू फॉर डूइंग दैट. यू आर ऑलवेज देयर, डजंट मैटर कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, आप पहुँच जाते हो, विच इज़ ग्रेट. हमें ऐसे ही सहयोग की जरूरत पड़ती है. और जब बात करते हैं ये सब हमारा जो कीर्तन भजन होता है या जिस तरह हम रामायण पढ़ते हैं, ये सब हमारा अपना कल्चर है जो बहुत, अभी तो गिरमिट डे भी आ रहा है, तो उस पर भी मैं बोलूँगा कि एवरी टाइम वी कीप ऑन सेइंग दिस, एंड द रीज़न फॉर सेइंग दैट इज़ बिकॉज ताकि हम बार बार आपको याद दिलाते रहे, बिकॉज ये हमारे जो पूर्वज थे, एंड फॉर देम इट वॉज वेरी प्रीशियस. उन्हें लाना बहुत कुछ था, लेकिन वो सभी कुछ तो नहीं ला पाए, लिमिटेड था, इसे कम ही कम उसको लाना था, दे हैड टू चूज. बट उन्होंने चूज किया जो रामायण बुक हुआ या ऐसा कीर्तन भजन, वो सब बोला एफजी में, और वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ से जब हम चले, लाइक वी केम टू न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी गए, सो वी हैव केप्ट इट. और काफ़ी लोग हमें बोलते हैं, इवन हमारे बहुत दोस्त है साथी है फ्रॉम इंडिया, दे ऑलवेज है कि ना तुम्हारा काफ़ी जो रामायण मंडली वगैरह हो रहा है, ज़्यादा करके जो लोग इंडिया से भी जल्दी आए हुए हैं, तो दे मिस इंडिया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मंदिर वगैरह जाते थे ना, तो यहाँ लोग पूछते कि मंदिर कहाँ है पे, और फिर बोलते हैं कि तो तुम्हारे जो फिजी मंडली से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अभी भी उस तरह जो रामायण वगैरह कायम रखे हुए. सो थैंक यू, हम आप लोगों को शुक्रिया करेंगे संजय और धीरू फॉर डूइंग दैट. और जैसे अभी बाद में अगर फेसबुक पे हम पोस्टर भी डालेंगे, तो आप देखोगे कि जो ये जो कलाकार है, दे आर वेरी यंग, देखने में यंग है, और निमित्त तो हमारा ही हम बच्चे कहेंगे, बिकॉज हमारे सामने वो लोग बड़े हुए हैं. दो भाई थे और बहुत प्रसिद्ध है, बिकॉज बड़ा अच्छा लगता था उनको देख के, दोनों भाई जब बजाते थे गाते थे, तो आज देखो बड़े हो गए. और धीरू, यू मेंशन कि उसके एल्बम निकला, तो एल्बम क्या उसने यूट्यूब में डाला हुआ या?
1: हम सोचता कि सीडी भी है, यूट्यूब में भी है उसका. तो उसका अभी लास्ट ईयर तो जाकर के हम सोचता हुआ उसका बैकअप यही बॉयज लोग किए थे ऑकलैंड का.
0: No, we will try to find the link. हम पता लगाएंगे कि लिंक कहाँ पे, then we will try to put it on this video as well. उस पर हम नीचे comments में डाल देंगे, so that you can go and look at it. काफ़ी अच्छी, एन वी वी एक्चुअली हम encourage करते हैं, हम चाहते हैं लोग थोड़ा सहयोग दें इस तरह के कलाकार के लिए, so that हमारे जो बच्चे generation है, जो अभी भी बच्चे होंगे, एंड दे आर लर्निंग, या टू एनकरेज दें, बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर ऑफ दोज. बिकॉज संजय, हम आई थिंक हमारा तो कोई समय आएगा, हम रिटायर तो होंगे ना किसी
2: भी. जरूर जरूर.
1: अभी ये एक शो और करके फिजी में.
0: ओके, फिजी में.
1: फिजी में, हाँ, जो खुद हमारा जो मंडली था वहाँ पे जसोरी में, नेताला से शेर
0: जसोरी,
1: हाँ, तो उसका ये भी, ये लोग, इसका नाना भी उन्हीं का.
0: काफी बड़ी बात है कि हम ज्यादा करके सुनते हैं कि फिजी से कलाकार यहाँ आते, फिजी से यहाँ आते थे, नो जब कोई आता है जो कीर्तन भजन या फिर आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता था.

0: होली में क्या अपन गाते हो? फाग
1: गाते
0: जगह
1: हैं।
0: अलग अलग जगह का जो अलग अलग स्टाइल ऑफ फाग होता है ना, वो लोग जब आते हैं तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। देयर वाज अ इवन टाइम जब हम ऑकलैंड से कलाकार आते थे, लेकिन नाउ हमारे कलाकार जाकर फिजी में अगर परफॉर्म करते तो बहुत बड़ी बात है।
1: अभी रानी भी तो फिजी के दौरा पे है।